0: ताकुली चांचिजरा साकुर चीजरा लोटिंग जू
1: यी लंबर सदन बा काना चीजे लोटो जू
0: बेचे लोटो
1: बेचे लोटो लिंची
2: सिंकना बच्चों को कंजा दादा ने बेचो लोटन जेंटे ले कां कांगी लोटन जेंटे बुझे लोटो की जुटी सूरी शाम ला बुरां जो जो मिट्टी का नवरे का ची हिम्जो सोए जंगले नवे बुझे लोटो ले ये जाने बु मेटा लू दावा चुकू दाखी ता जाकर सिब्जो को मोटन दो दिच ह्योरी लम्स खिरंगने
3: जे जे दिनको वी या था जा ये टीम बा जो कर छुटे जे न्यावा यंग ओन जो गति छम जति दिन जिन हिमो सदा छवा छे दिन थरंग ताक अचे सोमने रंगदी उतो छतो पे छेबा छिबी गंग गंगसी वों हिंदोंग को मामी यालुंग चंपो सो सेचु जी बी दिनको सिन छलोला यी जा छिबा दा योथला दिनी सीसेल ngengu की ngदु जडी लेका जमने सेगु ज खंग ᱛᱟᱛᱱᱚᱞᱤᱱᱟᱞᱟ ᱛᱮᱱᱤ ᱪᱤ ᱫᱤᱱᱠᱟ ᱛᱚᱨᱟᱝ ᱛᱟᱠᱟ ᱱᱟᱪᱟ ᱥᱚᱢᱱᱤ ᱨᱟᱝᱫᱤ ᱩ ᱛᱷᱚᱡᱚᱱ ᱫᱟ ᱯᱮᱫᱟ ᱴᱩᱯᱟᱠᱟ ᱩ ᱛᱷᱚᱝᱜᱚ ᱪᱩᱦᱤᱝᱜᱟ ᱛᱮᱱᱤ ᱛᱟᱪᱱᱟ ᱭᱩᱥᱤᱝ ᱥᱮᱱᱟᱞᱟ ᱪᱷᱟᱛᱚ ᱯᱷᱮᱡᱤ ᱡᱤᱱᱞᱟ ᱫᱚ ᱪᱟᱣᱟ ᱪᱷᱤᱨᱚᱱ ᱨᱚᱡᱤ ᱫᱚ ᱜᱟᱝᱥᱤ ᱣᱚᱱᱡᱚ ᱛᱤ ᱦᱤᱱᱛᱩᱝ ᱜᱚᱢᱟ ᱛᱤ ᱱᱟᱞᱟ ᱨᱮᱢᱤᱜᱤ ᱢᱤᱱᱡᱩ ᱫᱚ ᱭᱟᱞᱩᱝ ᱪᱟᱢᱯᱚ ᱥᱚ ᱥᱮᱪᱤ ᱡᱮᱵᱤ ᱛᱩᱝᱜᱚ ᱪᱷᱚᱡᱤ ᱠᱷᱮᱦᱤᱝᱜᱟ ᱟᱱᱤᱱᱤ ᱛᱟ ᱪᱷᱚᱞᱚᱞᱟ ᱤᱡᱟ ᱡᱚᱡᱤ ᱫᱚ ᱟᱱᱤ ᱭᱚ ᱛᱷᱟᱞᱟ ᱛᱤᱱᱟ ᱥᱤᱥᱮ ᱱᱜᱩᱝᱜᱩ ᱠᱟᱛᱟ ᱴᱟᱡᱩ ᱛᱤᱜᱤ ᱫᱚ ᱱᱟ ᱫᱚ ᱠᱟ ᱴᱟᱡᱤ ᱞᱮᱠᱟ ᱛᱤ ᱥᱟᱱᱡᱤ ᱱᱟᱞᱛᱟ ᱡᱟᱱᱤᱭᱟ ᱵᱚᱡᱚᱜ ᱨᱮᱡᱤ ᱠᱷᱟᱝᱜᱟ
2: ᱛᱤᱱᱤ ᱪᱤ ᱪᱚᱝᱜᱟ ᱱᱟᱞᱟ ᱭᱩᱡᱤ ᱟᱝᱟ ᱪᱷᱟ ᱭᱮᱱᱤ ᱱᱤᱢᱟ ᱠᱟᱴ ᱪᱷᱮᱢ ᱛᱩᱥᱚ ᱫᱟᱵᱫᱟᱱ ᱡᱟᱢ ᱨᱟᱝᱫ ᱪᱤ ᱪᱚᱝᱜᱟ ᱱᱮ ᱥᱤᱫ ᱪᱤ ᱪᱚᱵᱜᱮ ᱥᱟᱢᱟ ᱯᱟᱨ ᱯᱚᱱᱛᱚ ᱥᱟ ᱪᱤ ᱪᱚᱵᱫᱮ ᱪᱷᱮ ᱟᱝᱟ ᱪᱷᱟ ᱡᱮᱱᱤ ᱪᱤ ᱪᱚᱵᱡᱤ ᱪᱷᱮ ᱟᱝᱟ ᱪᱷᱟ ᱱᱤ ᱯᱟᱨ ᱱᱤᱢᱟ ᱱᱟ ᱪᱤ ᱧᱮᱥᱚᱢ ᱱᱤᱡ ᱡᱚᱡᱤ ᱟᱝᱟ ᱪᱷᱟ ᱡᱮᱱᱤ ᱭᱟ ᱛᱷᱟᱢ ᱨᱟᱝᱜᱟ ᱥᱮ ᱪᱷᱟ ᱪᱤᱢ ᱵᱮ ᱪᱚ ᱭᱚᱝ ᱡᱮ ᱛᱮᱢᱨᱮ ᱥᱮ ᱯᱟ ᱢᱟᱱ ᱛᱷᱮᱱᱤ ᱪᱷᱚᱞᱚ ᱦᱚᱝᱜᱚ ᱛᱟ ᱥᱮᱥᱮᱱ ᱠᱩᱠᱩᱭ ᱥᱟ ᱛᱟᱵᱞᱟᱢ ᱵᱤ ᱜᱩ ᱩᱡᱟᱱ ᱥᱚ ᱦᱤᱝᱨᱚ ᱢᱟᱝ ᱪᱮᱵᱟᱨᱟ ᱚᱝᱠᱚᱨ ᱭᱟ ᱪᱮ ᱛᱩᱱᱫᱩ ᱥᱮ ᱥᱟᱡᱮ ᱢᱩᱱᱫᱩ ᱞᱚ ᱯᱩᱱᱟ ᱜᱩᱱᱫᱚᱢ ᱢᱤ ᱯᱤᱛᱩᱱ ᱠᱚ ᱪᱚ ᱱᱟᱜ ᱥᱟ ᱥᱮᱢᱯᱚ ᱥᱟᱱ ᱞᱚ ᱱᱤᱥᱮ ᱡᱚ ᱞᱚ ᱡᱚᱱᱮ ᱫᱚ ᱦᱟᱪ ᱠᱷᱟᱛᱩ ᱱᱚᱵᱡᱟᱱ ᱥᱟᱢ ᱥᱩ ᱛᱚᱢ ᱢᱤᱱᱡᱤ ᱱᱩᱜᱮ ᱪᱷᱟᱢ ᱫᱟᱱ ᱨᱟᱦᱚ ᱞᱟ ᱱᱮ ᱭᱮᱞᱟᱢ ᱱᱚ ᱦᱩᱞᱚ ᱴᱨᱤᱯᱤ ᱪᱤ ᱱᱤᱵᱤ ᱪᱤ ᱞᱟ ᱢᱤ ᱪᱮᱞᱟ ᱫᱟᱱ ᱫᱮ ᱱᱟ ᱪᱮ ᱥᱮᱵᱨᱟ ᱪᱤ ᱪᱩᱠᱮ ᱱᱤ ᱧᱮᱥ ᱯᱟᱨ ᱦᱮᱱ ᱫᱟᱱᱟ ᱡᱚᱛᱚ ᱢᱟᱠᱟᱨ ᱥᱚ ᱛᱚᱱ ᱦᱮ ᱭᱟᱞᱚᱝ ᱜᱚᱠᱟᱨ ᱛᱟᱱᱤ ᱡᱤ ᱥᱚᱡᱟ ᱞᱚᱱᱚᱢ ᱢᱩᱥᱤ ᱭᱟ ᱥᱚᱵ ᱜᱤ ᱥᱟᱢᱟᱨ ᱛᱚᱵᱤ ᱛᱚᱯ ᱡᱮᱛᱟ ᱛᱨᱤᱪᱤ ᱠᱩᱫᱟᱣ
3: ᱡᱮ ᱡᱮ
2: ᱛᱤᱱᱤ ᱛᱟ ᱯᱮᱫᱟ ᱴᱩᱠᱯᱟ ᱜᱤᱪᱤ ᱯᱟ ᱪᱚᱝ ᱱᱟᱞᱟ ᱭᱩᱡᱤ ᱜᱟ ᱪᱟᱜᱮ ᱱᱮ ᱧᱮᱢᱟ ᱪᱮᱢᱛᱮ ᱠᱟᱴᱤᱠ ᱪᱮᱢ ᱥᱚᱝ ᱦᱤᱫᱟᱣ ᱛᱤᱱᱤ ᱫᱟᱵᱫᱟᱱ ᱡᱟᱢ ᱥᱚᱞ ᱪᱟᱱ ᱥᱚᱱᱟ ᱫᱟᱵᱫᱟᱱ ᱡᱟᱢ ᱨᱤᱫᱟᱣ ᱯᱮᱫᱟ ᱴᱩᱠᱯᱟ ᱜᱤᱪᱤ ᱯᱟ ᱪᱚᱝ ᱱᱮ ᱯᱮᱫᱟ ᱫᱮᱢᱯᱟ ᱜᱤᱪᱤ ᱯᱟ ᱪᱚᱭᱵ ᱜᱤ ᱥᱟᱢᱟᱜ ᱜᱤ ᱯᱟᱞᱟ ᱯᱚᱱᱛᱚ ᱛᱤ ᱥᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱤᱫᱟ ᱥᱤᱱᱟ ᱥᱟᱝ ᱠᱤᱫᱟᱣ ᱛᱤᱱᱤ ᱪᱤ ᱪᱩᱵᱫᱮ ᱪᱮ ᱜᱟ ᱪᱟᱜᱮ ᱱᱮ ᱪᱤ ᱪᱚᱵᱡᱤ ᱪᱮ ᱜᱟ ᱪᱟᱜ ᱱᱤ ᱯᱟᱞᱟ ᱱᱤᱱᱟ ᱠᱤ ᱦᱤᱫᱟᱣ ᱛᱤᱱᱤ ᱪᱤ ᱧᱮᱥᱚᱢ ᱱᱤᱡ ᱡᱚᱡᱤ ᱜᱟ ᱪᱟᱜᱮ ᱱᱮ ᱭᱟ ᱛᱷᱟᱢᱤ ᱨᱟᱝᱜᱟ ᱥᱮ ᱭᱟ ᱛᱷᱟᱢᱟ ᱜᱤ ᱨᱟᱝᱜᱟ ᱛᱮ ᱥᱮᱱ ᱦᱤᱫᱟᱣ ᱜᱟᱵ ᱛᱮ
3: Shilan da de jingwa me chu lung som che kan xie ji wi yo xie ren nan kuo qi yang che jin ba qin zhi xie de ci som ni ming ma ju ge na mi ding ni bi wei xiu se te ba li dang ba ma ci ju yin ni ba san ju ge qu yi ding ni ren xia lu ju de xie ju le da ma ci nian ni ni ming ma ju ge guo ding yin zhi qi qi bi wei xiu se zhang xiong ne che de tou ci nian dun ni ba san jie dun se le bian ba ni bi du de le qia lung tu se le ge ba mang zi kan ge xie la bei de zhu ban de yin na le da Mechu lung song ke kanshi chisali do, yo shi li na da, nangko chi ya chechun pa sin rin zon da, ba cingwe ni